फुंका हम मार्केटिंग ताको बुखु एफ एम उज्जैन दिने फुंका संगे पांडव नरक जो तोन लामसु 101.6 एबा सारा सपन डक मेगा हार्ट जोन नरक पांडव खनाय दंग यो नरक बाय दंग तापस तोन किचिंग नरक ताको और कॉल खलाय 2326253 तिनिनि पांडव कक्सारानि बागे तिनिनि सालकामा पांडव कक्सारानि बागे तिनिनि टॉपिक खा बलंग आनि लांगमा मार्केटिंग ताको बुखु जों बरक जों हाबा नकारै ओ हायुंगो थांगै दङै मानजिया ओ हायुंनि जत्तनि स्लाय मानमारि काहाम रुवाय ओंखा बलं ओ बलं अब बुफां वाफां सिमिया आरो तक्सा तक्तैनि सिमि चेंगै बेबा दङ जामं नङन सिमि दं चेंगै बलं करै बरक करै बलं करै लांमा करै मार्केटिं ताखो बुखु जों दिनै कक सोलायनाय दिनैनि टपिकखा बलं आनि लांमा नर कल खालायनाय टापकनि 2326253 232 दक नै बाथाम 232625353 हो नम्बर फियाबा फारि टापक जों खालायनाय सावकामा पान्दानि सिगां लब मुं रोजाबपुंनि बिसिं दिख्लाय जों गायदोन सुरिलायनाय जोंनि खागोसांलायनाय

0: काम छगो
1: आओ
0: तिनी नि पान्दाओ
1: मुने जान दो तो खोला तो खोला को खटाई तो न बंग आ हि या खले बदल अब ल बंग न बदाय बलाय हम बाय बोल नु तिनी नु पाय नि हम बाजी तो मन नु सो बोल
0: त्यसै 22 तारिखको फाइपे नै
1: बोलाउनु चिन लाङमा आउ कुनै टपिक दिने
0: आउ
1: तिनीहरूले चाहिँ संसार चाहिँ समाजले चाहिँ टपिक दिने औ न वास्तव न बोले नै बोलाउ गरिकै लाङमा लाङमा अग्नि जे टपिक बोलाउँ त मैले त बोलाउँ अब साधारण बोलाउँ प्राय विलुप्त पछि बोलाउँछु आगिन आगी छिर फुलाम जेनु त मैले आगिन नाकि छिर्की वान वर्षिङ फिक्सी तु हुनु
0: तार
1: बोलाउँ छु आगिन बोलाउँ कुन छु जे आगिन खोराङ मसिन मसिन खोराङ मुसिन खोराङ देऊ म खोराङ
0: मसिन हुमनी खोराङ र करिखाना
1: रिचा आगे हर्दी बोलाउँ छु मुक्ति हजुर मसिन आमाम मखनाउ
0: मसादा मसा
1: जब म खोराङ खोलाउँ जब उर्दो बोल्नु म चाहिँ खोराङ हजुर खोराङ खनाउ
0: अब
1: तब खनाउने चाहिँ ठिकु हुनु मिल्यो तब दिने त्यो टङ थाक दिने बत खुन जाका छ कि बुकम खतर कुरो क्या चाहिँ टङको वाचिर बमकमा आदि को अमाम बाबु बम्बोन चलाएर को वाक बम्बा दिने कोटाने नै बिते मब किखाइ नै फालमा रक बुट कोन का वाक मम क वन कै ना ओ मिलिया एवन कि को तो को को बुपा वा पान का मवा कांग लिले राय र कुनी नि को छोरे र थे पुरी छ अब तिसब मुखे को आगि नै तिसेन बोलिया ते आयन तो के म ट्राइ छि तिरानी नि को करानी छ अब उदो बोलम क्रिगे छिन लाम करे छिन लाम गुने प्रोजन नांगो छिन बुफांग फांगसा मुसु फांगस बुसु बोल मसन बिसक गुने ऑक्सीजन विस्तार क्लाइबा तिनी जितिने कि नांगमन बोल खुरु ऑक्सीजन हो चुका जितिने कि सिंखी व बुका को न ओसे ब खाबो फोन कर छुत्रा बोलम क्रिगे तो लामन से जाय या मका लाम बु दुदी को को बुझु को नंबर पोक्ति दो परिवर्तन को आगिन जि तोमो आगिनि ये वाति वामो आगिनि ये तो तुको बसे जे मसन जे बदो वाति तो सो ब अकाउ ते फट खले बो परिवर्तन को तो कुपल परिवर्तन कर नामा अब सन म परिया इशार ते क्रिका मने ते क्रिका ते मने ति बुक को ताउ तो क्रिया के तिम का क्वार क्वार ने हा तो तब का वाहन हाजी तब का उठुंग ब खाहिं इशान बगे तब चिकुन चाने को ठुंग ठुंग को तवा को ता
0: आओ
1: अभी आ आदिन तो बोते आदिन नि नि मुंग को क्या तो कि क्या मुंग तो राति को तो जो को उसा जो कमी थका कमी थका ता आदि को अखतर बहुत बहुत खत बिरी तो दे अब वो गुंदु दिया था
0: तो खत तो खा तो खा सिरी नुखली रो
1: तो खा जो कमी थका हम तो सर सर तुम लोग कमी थका सिरी ओ पीछे में मार और आदि करा नगाना गिने बोलन तो मोबाइल बा अबर विचरी रक तो बुरो के निशान नि बताय
0: सिकुर गुनी कक न सिकुर थासिंग सिकुर सिकुर तो नुक्लिया न
1: सिकुर एक संपुया आ को मुसुक मुसुक थिरो मुसुक तो रुई का के को पुया सिकुर ओसे तो यु खानाय गन कदा अब तो नुलिया नि लिया
0: बरन बिसिंग अब लीडर त ना
1: आ बर संपुया सिकुर ओसे तो यु अब खानाय गन प्रसाद ओला हाय अब तो नुलिया नुलिया आगे एमोन की तबुआ आ मा खुगो उनुलिया बोंतुला उनुलिया मुसी तो क्रिकी क्या काम अब तो क्रिकी क्रिकी आ बोलो नि माने खियो बिकॉज म मुखरे बोबों सब मसाली या लंग तो गाना गुनी से फाई नाइ को
0: बोलों क्रिकी के बोलों सब माने के मुखरे नको फाई मितिक नि माई खोइ जा फकेता हेदा
1: तीनो को को वो को जाने की जिन ओ सिन पारने बासिन तो नेरो माई से को बको जने हाब ये हो जा रखा बाय हाय वस्ता
0: हम भाई
1: नाओ हम बचा अगर तुम को फेगर का हम को तो

जोंनाय जुग सोराव योगा खालायथानि मानजाक बायनाय होनै साजाखा आसाल साहित्य सम्राट बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आसाइमा साल पालाइजाकने हास्ते हापांगनी साक्तार मुंबाई ओ साल दाल विदाल पांडाबतांग रक संसारजाकने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय लांगमा बिनी कग्रबानी सामुं तांलांगमा अबरकनती ताबुकनी सिक्ला चालाय रकन सोरनाय सोरनाय जुग संन सिरिनानि बागै दाल बिदाल बाथायमुं पान्दारक संसारजाकनाय होनै साजाखा हास्ते बेरेमनि अ अनुष्ठान अ पान्दानो नायथख्लायनि बागै जुननि सालनि जिबांनिखा पचिस तारिख जुन हिंखाय रोंन कतर यंनिखा विश्वविद्यालय बेरेम सोरनाय सोरनाय रक सोरनाय सोरनाय जुग सं बरक एक्सटेम्पोर स्पीच निखा आसमसा कक सामू पानरक संसारजाकनाय जुननि सालनि जिथाम अंगाखाय प्रबन्ध उखा कक खाल सीमानि बातायलायमुं संसारजाकनाय बाइस तारिखाव हिंगाखाय अबहायन दार बिदाल पान्दा संसारजाकनाय हिनै साजाखा

0: ना तो और यहाँ तो कहाँ अरे इतना इतना तामुई और बोन नौ कसो कटवान नौ किन्नो नौ रो ये ठंका और ठंगी मतलब वो नौ रो के अरे इतना इतना बस सांग से नौ बस सी सी थाई तो वो
1: सातों सातों के प्रमो जरा वो
0: ये वो ठंग के बांग हाथे कुछ क्यों ना वही या उमर बिक्षा बोलों साजों के जे आई नौ को किफिल थाई नगो या महारान बाजारा है किफिर फैसे का चाइता पास्ता ताम का आप तो सास है वो महारान बाजार की ने या बाजार का ना वो हाज अब तुम ही तुम गुगा पा को बुई ना नां का वो बुपंगवा पंगरो दे बोरो नो या सुखे खाक संगरो वा सुखे नो हमा मा साने बुकिस्तान तुम तो तुम्ही ये निशोरे सास देख सक सराई सराई
1: ไอ้นับโปรเซสนี่สิจะมันอมนอสิจะรุนนกขังอันคาสนังไว้สุดท้ายอ้าวๆๆเพียบะจึงกบังคุกบรกนอวันสุกินะดิจึงบุพังกันนังออกซิเจนมายะเคถิไนอัมติรกวาติพยังไนให้อัมติรกนี่สิมีชะลายอฮากอซุกิทังไนบุพังยารังกริงกะไกเพียบะจึงอมนอคาบายกะหำไกวันสุกิบกรกไปกะหำไกวันสุกิ ซอยซิคลายเนนังหนิจึงคาคาริเกบคลายลายอาบลซินซามงฮมงนซึงนุกเฮดิบานากอกบอยซิมิซายตงเลยอัมติยาดาเตบุพังไกดิเคซิมิดิบาอบุพังนอตนินิปูนมุสุกจายาบอลองอุงเกยอบนกอบลิปายาเตยมายังเกยถีปายาอาบอกบอจึงบอนอนายนังเนไกดิมานอลอเฮดิบาไฮลุคฮัมไบตะคุกฮัมไบฮัมไบฮัมไบนึงเบลัยพรักติคอลกอกซากะมาเรคิซิงตะคุบคุก बोलों जिन ऑक्सीजन दियो बोलों जिन जलवायु न नियंत्रण खाई तो नहीं वाती फाई तो नहीं चुबाओ हाँ कौशल था नहीं चुबाओ अब बोलों अब तक्षा तक तो रोनी नौ ब्रोक नहीं नुखों मुसमायों मुसीरोक तोगरोक मुखरोक बोले तो उसने बा बोलों को देखेंगे फिर अब बोरोक का मार्क है चंग बकमानाई बोलों के माखे चंग बकमाना ही बोलों सीज़न लांग मा हेलो
2: हेलो
1: पुंकाहम
2: पुंकाहम पुंकाहम
1: चीनी दाखोतो
2: आई चावा ब्रतो
1: लामसोगो
2: दले दले हम भाई नो नो लामसोगो नंगो तीनी नांग मा निकोग रोक तुंग मा निबाजी ना
1: आओ आओ हम भाई
2: इसका यार वो जोतने ने मोटा बंदा ना खाई जोतने किसे किसे मार खाई हम कम ता
1: आओ आओ आओ आओ नो कॉक
2: खाई था खुश नो आसे कॉक कबांग चाना इन्हों का स्टूडियो नूमी तलंग था नहीं
1: फाइ से गेंग तुम लेंगे वो सासुर ना इनके वो बखा ताम है मत तो हम तेरे को लॉक लाइट में का
2: ठीक नो ठीक नो आ बोलो ठीक हो सही माना मांगो चला बोलो तो मैं रंग खबर कई चीनी तो है उन हासिंग माने ओ खारानो तम बेलाई छातुंग तुंग मानो तम कई प्रतिरूप कई जने है जिले को
1: आज हाल तीनी
2: है उन बोलों नो ये आप उन कई चीनी निकाल सा का आप उन भाई नहीं चीनी निजे लांग मानो बोलों नो लांग मान नहीं तो वो ना वो कथा जा कैसा भाई क्या कैसा कथा जा मान भी हिट भाई दुसाई उनके छात भाई सांपली सुबह को
1: छात भाई सांपली
2: बोनी बुको बुफंगवा फंकरिंग कई नंग करी ही चुवान सुबी मानो कई तम तम दी नंग खाचिंगो बोलोंग निको ऐसा फॉल फॉक रानी को गावां किसा नोनो मस्त अच्छी क्या
1: दो दो दो
2: आंग आगे नोनो आंग बुफंग रो कई मनी नहीं करा बागों ना कई मनी नहीं वाट सब रोजांग नहीं जिनुगा न
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: अब
1: लोगों को क्या करना चाहिए
2: बॉक्सी कारमा की महिंग लात अन्ना नागा नो और तुम्हा नो मुथुना नागा में कारण तामुक्ति हाबाई और जो हायुंग बाई चीन ये जो हमें बात समो लोरी उठा का वन इस टू वन करी था
1: यार ग्लोबल वार्मिंग अब बेले किरमा सिंचा है दी बताबो हूँ
2: किरमा सिंचा ताबो तुम खा गो मार खाई तुम गो आजकल इन्हीं ने जो एक वाखान को बेले क्या वाव तब माने समोता करी क्या बो
1: बैलेंस करी क्या
2: आप लोगों प्रतिरूप आप लोगों प्रतिरूप खाई ना जानकारी ने जो पोल्यूटेड और निपोरिबेस ग्राम निपोरिबेस नहरी नहीं थी यांगो शाल गोर पारन खांके नया हॉप हॉप से नहीं सही हो अब उनके सुने तम कारण
1: अब नो
2: अब उनके कारण नारा नहीं नहीं जगा जोमी लुफुंगी नहीं पील पीयूंगु पुखी रो कैसा रो लुफुंगी नहीं तार परे बुफांगो फंक्टा नहीं नहीं यारो इंडस्ट्री तो एर खाई मनी नंबर वन

गेसं अजराव खनालाय नै बुखुब स्वर्णमाला खनाना हिनि कहरमानि नंगले आनो पगै पगै थां खना हनै फियाबा अरचा पं आनो सारका कार्तिक कुमार दाहना आं द खना मानि जाय आं खासाइमालिया आं जेमान मानि हिंके आरती कुमार जमा दियनि रचाप जाग रचाप मुं गाय खाख्लायो अबनो खना हनै गाय खनादि बुखुब नि खना तक जाग मानि रचाप मुं अजराव सारा सा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उजेन त खनाय तोंदि लगी तोंदि

0: खुनाइ टोंगो सारा जाबाइन डॉग मेगा हर से फेम उज्जैन्तनी खाने रचा मंग पांडा तिनी चंग जोतन शाइमा नो तिनी स्रांगशाल अंके चंग स्रांगशाल ओ खाने रचा मंग पांडा नो तो इधर लो पुलानी सिमी दिपोर्नी दाम चीनी अंगे शोधी जी बाजारा आपने या गुलो चंग खाना लायो थम नुक आपने या गुलो चंग दाल विदाल पांडा नो तो इधर लो ते नरक नि हमसक मा चीनी खातुंग मा पाई थे गोचंग खाना तो खरांग पांडा अब है के नो दिपोर्नी दाम ने दाम ही शोधी थम ची जरा नरक नि कचारो अंग तोंग नाई हंकाई चंग खाना लाय तोंगो खाने रचा पंग पांडा नरक नि कोई हरजाक रचा पंग रोक हंकाई नरक बो रचा पंग खाना ना हंके कोक दुख लाय दे ची नरक नि कोक दुख नंबर 0381 2326253 ও কক্তুক নাম্বার ও কক্তুক লাই শাহর দি বড় চাপং খানা নাই তিনি এস এম এস কানেকশন রোজা গিয়া হয়নি বাকে আং কক্তুক গিয়াশাক তঙ্গ হংকাই কক্তুক গিয়াশাক নাই স্বাগতম কক্তুক হ্যালো
1: হ্যালো
0: বড় চাপং খানা নাই नंग बाई तोंखे ओ हर साल ताई दो दो दो बले हम बाई
1: अब दो जेखनाई तोंगे सब तें बागे इंसे तें
0: दो हम बाई हम बाई
1: बले हम बाई
0: नना आओ हंके अबंखा बुखुक कोनिका रुचा मंखना ना हिनी कोई हर खाबो नंग बाई तोंखे ओ हर साल ताई ओ रुचा पुंग नो हंके खना लाई नहीं बिनी खना तोक जाक मनी रुचा पुंग रोक জরাও সারা সাপাই ডক মেগা হার সাই ফেম উজ্জন্ত অঙ্কা হাইকে নরক ব খনাই দং দি লগি দং দি বেলাই নখনা তত রচাপং জরাও সারা সাপাই ডক মেগা হার সাই ফেম উজ্জন্ত খনা দি

और जमंग तो खना लाइने तो फिर तब खना लाइने तब सजरा मानमानी कोक बड़ कोक तो मा बोभाग रोक स्लोबाकियानी राष्ट्र बकरोक पीटर पेलेग्रिनी मंत्री बकरोक नरेंद्र मोदी ने स्लोबाकियानी कुचुकुक राष्ट्रीय बरम द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास बरम या फारखा गामीनी रांगथों नो फानग्रा क्लाइना वो दूधनी स्नामा बांगना नांगथाई हनी शाखा हस्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो ओ बाबा यो डेयरिनी गायसा आलायदा बारजा तंगो मिया आगरतला इंद्रनगर गुमटी डेयरि बेराय ना जरावनो ओ ककनो शाखाबो हास्ते हापां काहाम नायकल मुंग बाय सराय सराय नि बिशिंतै सामुं तांगै तंगो हुने शाखा मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा आबो बाय त्रिपुरा डाक्तिनो काहाम कुक हास्ते बरम मानै मानानम एडीसी विलेज कमिटी नि चोंबारी बुस्कां सेप्टेम्बर तालनि नै जिस्नि सालमारिनि पुइला बेरेमो पायरिनाव हास्ते चोंबारी कमिशननि ककचाब गसिमुं रोखा सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरानि लाइबुमा गोनां सारिन्दा आदिबासी रगनि तामजाखनाय मानै जि आइ टेकनि गसिमुं मानखा मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा बिनि हदालाम शाखा त्रिपुरानि तामजाखने मानै सारिन्दा ओ गसिमुं मानमाबाय हास्तिनि लुकु तं रायदा रोगजाक खाति नारोखमुं ते फुवारमाव कायसा नांकुकमा याप्रि आगरतला पुरनायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार शाखा रांथों ते केबेल ते बीपीएल नुखुंनो सेब काहाम रोनाव गोताल खुंसा कायलाय बारि नक स्नामना वानसुक्तां नाहार जाखा बतला हाउरा दैमा रुकुंग ओ कायलायबारि नक स्नामना थाय जंजाखा आगरतलाव नबार दैबार नायखंनि बोखाथै साजाखा बिसकां दामनै चिब्रियो हास्तेनि किसासोग हांखर वातै वायमानो हनै हजाक मंग रोखा नबार दैबार नायखं आशोक जराथै खोनाबायखा दाबो सुजरा मानमानि

0: आं तै नाहारि फायग्राना
1: आता कसं कक थायसा सावै मा पायग्रा सिनायखा
2: सादिता तुमा कक न सानानि
1: कखे ताबुक सों फायमिनि नि नक तला द्रपनि सकां द्रपनि सिमि ताबुक इको नि न नक थायजरा लामाते बुफां तलारक फारजाक सिबजाक ना आसुक तंथ तकंगै तंखाब्लासा
2: फारजा नता फारजा गे हंकाय अ भाइ साफ सुथरा अंगै मानो हाजा
3: आबुर न साबो फारै रिबायसा ताकस
2: ताय साबो फारनासा आं न फुङाय खिन फारै रिबायचा
1: आं सायमानखा अमखे निनि सामंग न अंखाना हनै
2: नों खायचा मखाय सावै मामानि गलाय खाचा सुर ओ
1: बुफां तलानि सिमि ताबु इको निनि नख थायजरा फारजा नखलाते नखबारि रगब सुरुं सुरुंखे फारजाक सिबजाक आबुन बागन्य आं वानसखा ओ लामाते बुफां तला रगब नों न फारै रिबाय खाना हनैचा
0: हिन्दी तुई रक नों बायग्रा दिखाय साबो ताम न फार्मानि कक न सालाय त अ
3: इको नोंनि नोंनि आथा खसं लामा बुफां तला रक नखलातै नखबारि रक साफ सुथरा खाय फार्मानि कक न नसं सालाय तमानि बासै
1: बुफां तला रक ब नों न हगै रबाय खेना ना आथा खसं
2: आ कोन ताय साबो हगनानि आं हगै रिबाय ता
0: साल फायकै हाय रक मां मता ताय तामसा फुङाय खैन आबरक न बिनि सामो तामसा
3: आंखाय पंचायत हायाखायबा गामिनि बरसे पालखाय हगै फारि रिबाय खानाय हिनि वानसुं मानि ताबासै
2: नंखा पंचायत थांनानि इमांनि कक साबर पंचायत न कारिले गामिनि बर' रगब हायनता रां सपायखे बागै चालायना सिमिजे पालियाया गामिनि बर' रंनि कक न खायत अर साजांनाय सिग्रै
0: साखाय सेजावै साजाक मानि हायग्लायानो बलं हगनानि तै लामा फारनानो कारिले बंनि नखला नखबारि रकसे फालायग्राया
1: आता गसं निनि नखलाते नखबारि रक नुगै सों काहामके सायमानखा नों खरकसा साफ सुथरा तंनाय नहनै
3: आंखाय उ लामा गानायनि बुफां तला रक न हगै सिरों सिरोंखै तनि मानसे बेलायं जाखा
1: आरा गानागिनि न माजि लतनि बुदुक तंनाना आता गसं बाहाय जिब जिब मतम गेराब साय तंगु हायले
2: आ बुफां तलानि आयां तला द्रब हासु खाखुसु रन माजि लता बसं संसा कतर मातंगु आब ताबुनिया सुसुई सुसु संनि जरानि सिमे नुगै फायमानि बिसिब्रु न आं हगै साफ सुथ्राखै रैबायदि आबरं न
0: बारमा बो बुइन सलिया बेलायखाय न बारु गामिनि सिख्ला सिख्लि रगबा साल फायखै आरो मां नता
3: आ साफ सुथ्राते मतम सतम रगब बरनि बखानो दमा बखाय खिबिबो
1: आबुनि बागन ताबुकनि सयसिमा लामातै साफ सुथ्रातै मतम सतम तैनाय उराम उराम न साख्लाय तंमानि खोनाया दासा
0: जेसक फान आवायङै तंथुं जिनि बरक रक आबुन खोबो खोनाया तमं ब सलाया गजाता
2: ए हानि बागन बंनि बखा रक ब सिद्रा ताय पद्रे पदनि बेमार रक ब सागो गफा जागै तंबाय
1: आता गजों नों सन्य साता जे साफ सुथ्रा गरै सिद्रा तंनाय रखे बखाबो सिद्रा तै हामिया चाय रक ब काति उइमानिया
3: आबखै सयकक न ताबुसु जराजों आसुक गामि गामि नक थगै सामुं खाय फायमानि नक साफान साफ सुथरा नुखुं मालायाखु इगो ताबुनि नुखुङो सिमिसे साफ सुथरा तै तंथत मालाय फायग्राखा
1: गुबै कक न सानै थांखे तुइ रक सुदो चेन नोंनानि तमाबो हाय रक कुंगु लतारक बुसुकनि हुजागिया बालुक जाक उंबाय खाना समतिक बायतिकनि तक बुलुक बुथै हाय ओंगै खारसाय तंबाय उता हनौ
3: आबो ताबु नंनि बसांगो हिनै सामाया दो आताते बासै इ क ताबुक जों दैनोंमानि लतारखाय दामो बायजानि बुखुना गोसोंनि मतम हु सेंगुइ तंखा
1: लतारक गोसों गुपुर हुजा थंके दै रक थगमानि सुदुसे जुदाता
0: आंखाय मुखै बायन मानै रक हुजागो फुङायखै बुइला माइतुक मुइतुक तै माइरां लतारक न सकां हुइ सुइ मा पाइग्राव आबोनि उलोसे तै जेबा जे नुखुनि सामो
2: आंगो ताबुक निनि बासिनि कोंनो सोरंजाक्तै फुङायखैन सिगां नखला नखबारिते लामा रं फारिमा पागिराव हायाखाय सामुनि बुमासे मानियो
3: आखाय जासेनो नख थांखाय बतै रं न सिगां नायजाग्राव आता नंनि फार्मासिमा रं कारिब नंनि नखनि दि रं खादिमाब मगल क्लायता
1: माइरां लता माइथुक मुथुक रगब बेबाक न बंनिखे गोसों गोसों तै जाय जाय खेन तिसावै खादिजां मांता
3: आबो हाय साफ सुथरा नुखुं रगखाय जा थानि नोंथानि रगब मुंसाङ बोखानो बोथारैन नोङै जावै दङ मानता
0: हायके बादिनि

0: आइ बिहि बरक बुखुङै जलि जागै अकक बांलायुता आदा मास्टार
1: आंसे सुबारबाय जन्नो कसारै तुबुनाय मुंसासु रगदा सालै मानलायनो हनै आबोबो आनि बागैया आनि सायसुनो बागैया कामि लुकु हामकारैनि बागैसे
2: हायनि बागैनो आंखाय आइचुक बासावै संगै सुगै बेबाक नतियार खायै तंबाय मानिता आबोसे हापाय लायद्रब सिखो तुमाबो अंगलायै आरलिया गजों संनि नगसे माइसाला सिनाय हेनै आसुक नि माइमुइ रग्न तुबै मा फाइलाय खाता
3: हंखा हंखा नरक तै केबो सारे नांगलिया आं काहाम खेनो बुजि पाइखा ताबुं नरक बेबाग न काहाम के खनाबायदि लामाव आं सुपरवाइजर बाय मालाय बुखा मालाय बिनि फाइमानि कक रग्न बेबाग न सावै खनारि बायखा
1: तामरक सालांखासा मास्टर नन
3: सालांखा नों निनि कामिनि बागै जे एप्लिकेशन रिमानि आबरग्न इ खेबेन क्लाय रिजेक्शन नै सालांगौ
1: कामखक
3: तै कैसा हंखांके इ क थासिंग नरक जे सामानि गसंनि नखनि कक आबोन सागाता
2: गसंनि नखनि कक नख ताम सालांखासा मास्टर
3: गसं संनि नखन बेलाय के साबसुता तै मतम सतम अंजागै बनो साबसितिनि मुंसाजग मानि रिसिना नै आनो साय कालांखा
0: आंबो गसं संनि नखन जरातै तंथक जाक सुकानो
4: आता थारानि नख आं फुङो थाङै नुगैखैनो मासि मास हाका बरंन बरग बुखुं नै लिगि लागायते मुनाम सनाम न तैन कक बांलाय टंलायु आं सगै द्रब
0: जतनि सायले सुपारभाइजनि बिहि तै नङानि नायफ्रु बंनि आ लतन नुगै दै बं जाखा लता हनैबा आबो लतन त सोलै टंसिबा
4: बंनि आ लता हुजाय बिसि बुसुख सिं खना त बुलुक खामति बुतैन सोलै टंखाता
3: ए आबोनो आता थारा खना दे हजक तिंगो
1: दो सादे
3: बरक लांगमाव साफसुत्रा बेलाय न दरको साफसुत्रा तंखांके बखा तंथमा मानु बखा तंत खेनो सामु काहाम उंगो वांसोमा काहाम वांसुक जागो बखा सराय सराय इंखे बेबबक न सराय सराय नाय हाने बागिनो सुपरवाइजर नि नगो खाबाथा जागलिया गसंनि नगोखे खासंगमा मानजागै थाका नखला नखबारि नखसिंताय मानैखनि रग्न सालब्रुम न गोसों कुफुर खाय खातिउय थेबै तनैना खायदि न गाना रग हामुंसिनिया खुम्र कायदि खुमनि बाहायबाय मतमपिरि तन्दि हाखेसे जेसा बरक फानो जेसुग लेंमा लेंसा फाय हाबायखे खासांमा मामफायो नों आं मनलेंमा रग बगै तै बोखा हेलेंसै तंनाय नरक आबाखे वालानि ककरै जे ओंमानि गाहाम नंखा नरक बेगबाग न तिनिनि सिमि सोमायचे तांसिदि साफसुत्रा मतम सतमखे तंगै बायथिंनि बैसाग तै बोखानो गाहाम तनिदि आबाखे न थिनानि लांमानब तोंकलक खायदि ओंखा गोदोगमा सालरमै नरक बाय अकक रग्न सानानै होनै तंमानि तिनि जरा मानखा सावै खनारै मानखा आसोगन आं ताबो हिमराखा नाखांखे उलग तैसा सालायफियानो थाखा खुलुमबायखेदो
1: दो
0: मास्टर सहाय नांगमान कक साइक लांखा

0: फुङ छटा बाचाडे छटा बाचाए तुइरङ नङडी नङ किजा टोयलेट थाना मुजके टोयलेट थाने अयाके थाङ किजा हिमडी एक दुई किलोमिटर हिमडी जसो स्टेमिना तङखे नगो फाइमा परे किसिसा आजगुइ निनी व्यायाम रङ खाइदि किसिसा बेसिया बिस पच्चिस मिनट बाई स्टार्ट खाइदि अब नै उलो माइचामानी अब खाना बगे आङ त बोक ओ रेडियोनि रेकर्डिङ बाइ त आछ कहाँ छै माङ्गला सबन बगे सूक्ष्म व्यायाम नरं युट्युब चेक खाइ मानो सूक्ष्म व्यायाम अब के तामो चिनी जोइन्ट न फास्ट मुभ खाइन नाङो वार्म अप चिनी जस्ट जोइन्ट न फास्ट रेडी खाइन नाङो नों थाङै न हाइ न लाङका न व्यायाम खाइके नों देराइ सानाय हेके फास्ट अबनो रेडी खाइन नाङो निनि जे जोइन्ट न फास्ट तेरप तेरप खे दस पन्ध्र बार मुभमेन्ट खाइ अबनो वार्म अप खाइन नाङो हेके तल याकनि जे चिनी तलानि सिमी साका जरा जत जोइन्ट न फास्ट पाँच दस मिनट चुङबन मा लुज मा खाइन नाङो लुज खाइमानि उलो छे जुन व्यायाम खाइन नाङो व्यायाम ताम खाइन नाङ काइट आं साइदि हो जुन सूर्य नमस्कार खाइन मानो बट बिपी जे तंनाय बरं सूर्य नमस्कार मा खाया बिकज सूर्य नमस्कार खाइके बिपी बारि नाय सो सूर्य नमस्कार बन्ने बागे माना भुजंग आसन खाइमानो शशांक आसन खाइमानो ताड़ासन खाइमानो त्रियाक ताड़ासन तब मूसाके बरक बुझि गेला सो आं सान रं किसा रिसर्च खाइदि केव योगा इन्स्ट्रक्टर गाना गिना तंखे बरं बा किसा कन्सल्ट खाइदि अब जस्ट कायसा प्रोग्राम बाई आं अब एक्सप्लेन खाइमा गेला आसन खाइमानि योगा खाइमानि जे योगासन खाइमानि अब जस्ट टेन फिफ्टिन पार्सेन्ट से निनि मेन निनि रुटिन बाइसे नुङ हामनाय नियम बाइसे नुङ मा हामनाय नुङ फुङ बाचादि हिंके निनि चामानि माइजे माइ नुङ खाइना नांनाय आं त माइनि चामानि स्टाइल सायरि गाना जों त निजिनि माइरां नखे एटी पार्सेन्ट जों माइ नुङ नाय ते ट्वेन्टी पार्सेन्ट मुइ नुगो चिनि माइरां ओ अबनो उल्टा मा खाइनाय मखैदों रं निनि सेभेन्टी एटी पार्सेन्ट दन्दे माइनि नि ट्वेन्टी पार्सेन्ट दन्दे ते कैसा हिंके नुङ फुङबाय फुं सारिक जे चामानि अबनि बासिं नुङ अबनि बिसिं नुङ काहां के नायदि नुङ जत चामानि नुङ संजाक से जाओ नुङ गोथों जा जाया गोथोंनि बिसिं नुङ तामा जाना नांनाय तामा सुगार पेसेन्ट नि किसिस आलगा डाइट दंनाय जों खिरा रं चाय मानो गोथों मानै जे नुङ चाय मानो जे दानि बिसिं सुगार करै अ मानै जादि अब सुगारनि पे सुगार पेसेन्ट नि बागै हिंके जे आलगा बिमारि दंनाय बरं सेम गोथों मा जाना नांनाय चल्लिस टु फर्टि टु फिफ्टि पार्सेन्ट नों गोथों मानै जाना नांनाय जे गोथों मानै जाना नांनाय ते फिफ्टि पार्सेन्ट नों कमन माने जे सङै चामानियाव जाना नांगौ ताबुक जे जुंसाय जों माने जत कमन माने
1: सङै चामानि
0: ए ते कैसा हिंके हर थुमानि हर एगारोटा बार'टा थु नों थुना नांनाय साढ़े दसटार मिसिं थुना नांनाय
1: छयटान मिसिं बासाना नांनाय
0: येस हिंके हरनि जे लास्ट मिल बाई नों थुमानि टाइमिं नि बिसिङ टु टु थ्री आवार्स नि डिफारेन्स थाना नांनाय हिंके आठटा सातटा नि बिसिङ नों मा जाना नांनाय
1: सोमबार थुमानि हरनि चाबै खेंखेन वाइसन रियान सानामि
0: जे ए अबनो त कैसा रिजन
1: अबनो रिजन
0: रिजन तामो हिंके नों माइ चाखा हिंके नि सामंग्रि नों हाइन रखखा हिंके नि माइ अबो हान बहो क्राय थङ डाइजेसन नङ गला हिंके फुङो बासाखे नों गेस ओंनाय एसिडिटी ओंनाय
1: ते कैसा आसिन जरबो पाइथ फाइसिम फाइसो वते कैसा सोंना मुजों माके ताबो जे 9 टु फाइव जरानि जे अफिस खालायनाय आबुन कारण तामुनि जे ससियेल मिडियानि जराव ताबु लुकुरक जतन जे इन्टारनेट बाय गोरोङै दङ दय थुया नों सागा दय थुया अ थुयानि बागैनि तामुङाखै गोबां मा बरक न ताबु गोबां खुब मेक्सिमाम बरकनि नुगजागौ गोदाना सामानि फेकुं सामानि
0: येस
1: अब का इयाकांना निके योगानि बिसिंतै बाकी इयाकांनाय बो ब्यायामाव खालायगोन इयाकांना
0: अब बेलेखन इजि से जे डिसिप्लिन फलो खाइमानाय बरनि बागै बर साप्ताखै जे बायनो हामैमानो तबक जे बरक एडिक्टेड अंगि थांखा इंके डिसिप्लिन साइमानो हाइबोन खाइना मुजुङा बरं जसेक बन बरन लामा फरोंदि बरं अंगलाग इंके बाहायखै आरन सिमि नंखरि माने इंके सिम्पल जे सामानि निनि मोबाइल नायमानि स्क्रिन टाइम अब खाइना नांनाय नों जे मोबाइल नायमानि नों घन्टा घन्टा मोबाइल नाय दङ अबनो नों खाइदि जेफोर नों नायनि गोदाना सिदा खाइनाय दि कैसे एंगल सामने नाइदी निनि जे सर्वाइकल रिजन जिनि जे गदानानि जे पार्ट दंमोन अबनो सर्वाइकल रिजन हिनि सावो अबनो बुसखाङो कय रिता नाइदि जे निनि चिन्ह पेरालेल टु द ग्राउन्ड तनि नाइदि दे अबनि लगि फुङो बाजाय बेक बेन्डिं आसन खाइना नांनाय गे बेक बेन्डिं आसन त मां साइरिखा नने निनि बिसमानो उग्लुक फाइजेगौ कय रिमानि आसन रं खाइना नाङो जे भुजंगा आसन सरल भुजंगा भुजंगा हिंके धनुरासन अबरं খাই অ প্রবলেম নজে গদনা সামানি প্রবলেম রং নো বা বিষ্মা সামানি প্রবলেম রং নো ঠিক খাইনা না

की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो, पर आँखों से सब कह

थोड़ा वो गुड़ाई थोड़ा सा ठहराई घर जी यहाँ फिर वहाँ प्रीत लुटाती फिर चम चम चम बरसी वो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: रिफ्रेश स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों

0: को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
3: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।